0: क्या तुम आफ्ना गया दिन कि आपने दिन के बारे में जान्न चाहन्छौ? तसो हो भने आस ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन माए
1: हमारा यहाँ वृन्दावन बठै ज्योतिष विद्या पढ़वटी आएका ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भएका बहुत ही वर्ष अगाड़ी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जान्ने देश र परदेश में सम्मान र ख्याति पाएका ज्योतिष पंडित लक्ष्मण सुवेदीले कम्प्यूटर का माध्यम बठे चिना चिठा बनाउने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाउना कि लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताउने पृथ्वी को उद्धार गद्या रत्नले जन्तर बीज लाउने जन्म कुण्डली मा भएको दोष ग्रह को शांति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधि बठे गद्या
0: सम्पर्क की लेखाए ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नम्बर 9845-39-76-58 रे 9814-27-36-01 तमु फोन बठेलाई आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउनक लेखालाई सम्झन सकन्छौ
2: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ संस्कार र संस्कृतिको संवाहक सनातन रेडियो नेटवर्कमा कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण।

0: रंगीन जस्ता पाता खुला जीवरा कलर और से तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आठ टिकाउ है
1: तीन गुणा बेसी टिके
0: हुला छ त अरु कथिले खोज्छ
2: ओ जेठा बजार हिट कि क्या हो
3: जस्ता पाता किनौ कि भनेर नि काका
2: कुन चाहिँ जस्ता पाता किन्छस् त जेठा
3: यताउति जुन पाइन्छ त्यही किन्नु पर्ला।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: उच्च गति, भरपर्दो कनेक्टिविटी र बलियो नेटवर्क द्वारा संचालित सीमलेस ब्राउजिंग र स्ट्रीमिंग का लागि डिश होम इंटरनेट अत्याधुनिक प्रविधि को नेपाल मा पहिलो पटक वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट को IPTV सेवा प्रदान करने डिश होम इंटरनेट नेपाल को एकमात्र नेक्स्ट जेनरेशन।
2: रेडियो संखुवा सभा समय सूचक अहिले रातिको 8 बज्यो।